0: এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু, এতিয়া 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মনোজ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअली पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए, युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निःशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू शामिल होंगे। उनके साथ विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधान

0: विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। 10 दिवसीय ये सत्र 30 सितंबर तक चलेगा और इसमें 7 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीएस के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू करीब 2 दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और एनआईए ने 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले सहित 50 से अधिक मामले दर्ज थे। नागालैंड के फिल्म निर्माता तेजा रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के पहले दिन शूटिंग में 2 रजत पदक जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एलावेनिल वलारेवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar, Kevadia tomorrow. On Wednesday, the President will grace the 75th annual convocation ceremony of the Maharaja Sayajirao University of Baroda at Vadodara. She will also launch Brahmakumari's campaign Spiritual Awakening for World Renewal and inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Centre at Vadodara. The President will virtually launch the campaign Youth for Vikasit Bharat, Awakening Inner Strength for Nation Building of Brahmakumari's Nadiyar on the occasion. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the 2-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi last evening. President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources.
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनके यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: Indian Air Force Chief Air Chief Marshal A.P. Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur yesterday. The flight by the air chiefs of both the nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Guardian 2026 in Jodhpur. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in bilateral defense ties.
3: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time is a great milestone in the history of our relationship. I very clearly remember in Tarang Shakti 24, your team was here. I had come as the vice chief, met them all. But unfortunately, your aircraft could not ferry because of bad weather in the southeastern part of Asia. And we missed the opportunity that time. But I'm very happy that we have caught up this time. This reflects a deepening dimension of our special strategic and comprehensive

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे पुरस्कार शामिल हैं। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल हैं। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाले का नाम तय करती है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, X पर @AIR News हिंदी और Instagram पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है पीएम किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
2: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
1: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
3: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो पढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
1: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबू से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा 2.0 योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: कार्यशाला में प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रबोध स्लोगन प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बंधु निःशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अयोध्या नगरी अब धार्मिक पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
6: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
5: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
7: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
5: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच

0: बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर तीन विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने कल से ओडिशा में बारिश तेज होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। 3 से 4 दिन में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई EPFO वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कल 2 रजत पदक जीते। एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य। अस्पतालों में मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीद कीमत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त, कीमतों की होगी समीक्षा। गर्भपात कराना या नहीं, अंतिम निर्णय महिला का। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ का अहम फैसला दैनिक भास्कर में है। न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ समाप्त करने की दी अनुमति। बहुप्रतीक्षित NPS स्वास्थ्य योजना में 30 लाख रुपए तक का मिलेगा बीमा, हिंदुस्तान की खबर है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। पेंशन फंड नियामक ने किए दिशा निर्देश, अगले महीने लागू करने की तैयारी।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमरीका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: 2030-31, छिंदवाड़ा फार्मर बसंत पटेल सेड दैट फार्मर्स आर हैप्पी विद द डिसीजन टू कंटिन्यू द स्कीम फॉर 5 मोर ईयर्स।
1: सरकारी योजना जो है
2: वी आर वेरी हैप्पी दैट द किसान सम्मान निधि स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 5 मोर ईयर्स। द स्कीम इज वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स। इट हेल्प अस इन बाइंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर एंड इज ऑल्सो यूजफुल ड्यूरिंग द स्विंग सीजन। वी थैंक नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट।
1: सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वुमेन फार्मर्स हैव ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम द स्कीम। द स्कीम यूजेस डिजिटल वेरिफिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू सेंड द मनी डायरेक्टली टू फार्मर्स। फॉर आकाशवाणी न्यूज़, आई एम विपिन मिश्रा।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: मन शांत हो तो हर कठिन परिस्थिति भी एक नई और महत्वपूर्ण सीख बन जाती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू लिखते हैं,
3: सादर नमस्कार, ये मेरा प्रशंसा पत्र है। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ, इससे हमारा भरपूर मनोरंजन तो होता ही है, हमें सीख और प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरे टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद।
2: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों, कोकोवा या कोको फल का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
3: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से

0: किस गांव से हुई थी?
1: तो श्रोताओं, इसका उत्तर है चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से राजस्थान के खेजडली गांव से हुई थी।
0: और फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा क्यों?
1: उत्तर है साथियों, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि इन्हें जीवात्मा माना जाता है। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो जंगल के दूसरे पेड़ पौधों का भी पोषण करते हैं।
0: और हमारा अगला सवाल बड़ा मजेदार था। हमारा सवाल था श्रोताओ, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो जंगल का रक्षक लेशी उनके साथ क्या करता है?
1: उसका उत्तर है साथियों, लेशी उन्हें जंगल में भटका देता है।
0: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है?
1: खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का संदेश है, जंगल हमारा नहीं है, हम बस इसके रखवाले हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था?
0: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। हमारा निवेदन ये भी है कि इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को ताज़ा तरीन जानकारी के लिए जरूर फॉलो करें।
1: जी, और आपको बता दें कि अब NCERT की कक्षा 9 तक की नई पाठ्य पुस्तकें किसी भी सर्च इंजन द्वारा NCERT की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF।
0: और यदि आप इन पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
1: जी,
0: वहाँ आप हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी जब चाहें सुन सकते हैं। और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: अंग्रेजी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित कविता को संगीत रूप में प्रस्तुत करते हुए ये कार्यक्रम नगर की बनावट, साफ सफाई और कूड़ा निपटान समेत स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने का संदेश देता है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है जगमगाता गांव।
1: इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग लिया गया है और विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि हमें अपने विचारों को कर्म में भी प्रकट करना चाहिए, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं है।
2: साथियों, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको जरूर प्रोत्साहित करेगी। ये घटना अमेरिका की है।
3: ये बात उन दिनों की है जब अमेरिका संयुक्त राज्य नहीं बना था। दरअसल ये कई देशों की कॉलोनी थी। उस जगह के मूल निवासी आदिवासी थे, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता था। आगे चलकर जब सभी राज्यों का एकीकरण हुआ तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका बना। ये वही अमेरिका है जिसे इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था और इसे नई दुनिया का नाम दिया था।
2: कोलंबस निकले तो थे भारत को खोजने, लेकिन पहुंच गए अमेरिका। तो आइए मित्रों, इस जानकारी के साथ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये 17वीं शताब्दी के आरंभ का काल था। उन दिनों आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थी।
3: मोटर गाड़ी, टेलीफोन, चलचित्र, समाचार पत्र कुछ भी नहीं था। यातायात के साधन नहीं के बराबर थे और लोग आवागमन के लिए या तो पैदल चलते या पशुओं का इस्तेमाल करते थे।
2: बिजली भी नहीं थी, इसलिए रात को लोगों को यात्रा करने में बड़ी परेशानी होती थी। जो सड़कें थीं, वे भी खस्ता हाल थीं। बारिश के समय वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाया करते थे और उनकी मरम्मत करने वाले नहीं के बराबर थे। और तो और, अधिकांश सड़कें कच्ची ही थीं।
3: इन कारणों से वहां दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। रात के अंधकार में यात्रा करने वाले मुसाफिर और मुख्य रूप से व्यापारी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते थे। हर रोज कोई न कोई ऐसी घटना होती ही रहती थी।
2: ज्यादातर व्यापारी ही इन दुर्घटनाओं का शिकार इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें अपना सामान लेकर सुबह सुबह मंडियों में पहुंचना होता था और इसलिए उन्हें रात भर सफर करना पड़ता था।
3: अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में एक गांव था, नाम था पोप्स क्रीक। इसी गांव में एक बालक रहता था। उसके गांव में भी इस तरह की दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। जब कोई भी उस गांव से रात को गुजरते हुए दुर्घटना का शिकार होता तो उस बालक को बहुत दुख होता।
2: लेकिन किया ही क्या जा सकता था, उसे कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता था। उसने अपने गांव के बड़े लोगों से बात भी की, लेकिन सबने हंसकर टाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक भी उड़ाते थे। उसके पिताजी अक्सर अपने व्यवसाय के कारण बाहर ही रहते थे।
3: लेकिन वो बच्चा इस समस्या के समाधान के लिए लगातार सोचता रहता। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से कहा।
4: माँ।
5: हाँ बेटा।
4: मुझे बहुत बुरा लगता है जब रोज हमारे घर के सामने दुर्घटना होती है। कोई ना कोई रोज हमारे घर के सामने गड्ढों में गिरता है।
5: हाँ बेटा, पर ये कोई नई बात तो है नहीं।
4: हाँ पर
5: देखो, ऐसी दुर्घटनाएं तो पूरे गांव में हो रही हैं और दूसरे गांव में भी होती हैं।
4: पर माँ हमारे
5: लेकिन बेटा, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं।

0: सड़कें खराब हैं और अंधकार भी तो है, तो दुर्घटनाएं तो होंगी ना बेटा?
1: जरा सोचो ना माँ, लोग इसी तरह दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं, क्या हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे?
0: अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
1: लेकिन माँ सुनो ना।
0: अरे बेटा मैंने
1: कहा। अरे सुनो, उफ माँ।
0: अरे बेटा मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
1: माँ
2: कोई सुनता भी तो नहीं है, मुझे इस समस्या के हल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या करूं?
3: साथियों, उस बच्चे ने हार नहीं मानी और अपने पिता से भी बात की, उसने गांव के बड़ों से भी बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला।
4: वो बच्चा लगातार सोचता रहता कि क्या किया जा सकता है, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी और रात्रि भोजन का समय हो गया था, सब डिनर करने बैठे थे।
0: लो बेटा, अरे क्या बात है बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, बताओ बताओ क्या सोच रहे हो?
1: हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, बेशक बहुत बड़ा समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम कुछ तो कर ही सकते हैं।
0: कुछ कर सकते हैं? भाई क्या समाधान है, देखो बड़े बड़ों से कुछ नहीं हुआ और तुम करोगे।
1: हाँ माँ, माँ कैसा रहेगा यदि हम अपने घर के बाहर एक लैंप रख दें या लालटेन टांग दें?
0: बेटा जॉर्ज, तुम कैसी बातें करते हो, लालटेन टांग दें इससे क्या होगा भला?
1: माँ मुझे दे दीजिए ना एक लालटेन।
0: बेटा
1: मैं जल्दी लालटेन को घर के बाहर लटका दूंगा।
0: अरे इस छोटी सी लालटेन से क्या होगा, क्या दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? सारा गाँव इस बात पर हंसी उड़ाएगा हमारी।
1: हंसने दो ना माँ, हम लोगों को यूं ही चोट खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं मानता हूँ कि सारी दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, लेकिन
0: लेकिन क्या बेटा?
1: कम से कम हमारे घर के सामने तो दुर्घटना होनी कम हो जाएगी ना, लालटेन से लोगों को रास्ता दिख जाएगा और वे बच जाएंगे। लाओ मुझे एक लालटेन दे दो माँ, दे दो ना माँ, दे दो।
0: अरे बेटा सुनो तो
1: माँ, एक लालटेन दे दो।
0: देखो बेटा इससे कुछ नहीं होगा, और तुम लालटेन उठाकर, अरे तुम,
1: अरे माँ लालटेन दे दो।
0: अरे लालटेन लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा रुको तो सही। ओहो सुनो तो, देखो ये बच्चा मानता ही नहीं है। ठीक है जैसा तुम सोचो।
2: एक दो दिन के लिए ऐसा करने में हर्जी क्या है, करके देखता हूँ। कहाँ रखूँ, कौन सी जगह, यही ठीक रहेगा। कुछ नहीं करने से कुछ करना तो अच्छा है।
3: साथियों, उस बालक का नाम था जॉर्ज। उसने जलती हुई लालटेन उठाई और घर के बाहर लटका दी। वो देखना चाहता था कि इसका क्या असर होता है। रात भर वो जागता रहा।
4: सुखद आश्चर्य, व्यापारियों और यात्रियों का झुंड वहां से गुजरता रहा, लेकिन उस रात उसके घर के आगे कोई दुर्घटना नहीं हुई।
3: सुबह वो बच्चा भागा भागा माँ के पास पहुँचा।
1: माँ माँ माँ,
0: अरे अरे बड़ी खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: देखा आपने रात को लालटेन टांगने का असर, मैं तो सारी रात जागता रहा।
0: क्या क्या कह रहे हो तुम, क्या वहाँ पे एक भी दुर्घटना नहीं हुई?
1: नहीं माँ, एक भी नहीं।
0: अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि हमारे घर के सामने किसी को चोट नहीं लगी, तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा।
1: मैं कहता था ना माँ, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है, अब तो मैं गांव के लोगों को भी ये बात बताऊंगा।
0: हाँ ये जरूर करना, तुम सबको बताना।
1: हाँ माँ,
0: बहुत अच्छा काम किया बेटा, मैं तो विश्वास ही नहीं करती थी, बहुत अच्छा।
3: तो साथियों, जॉर्ज को बड़ी प्रसन्नता हुई, उसकी माँ को भी बात समझ में आने लगी थी। उन्हें लगा कि यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हम अपने घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को तो कम कर ही सकते हैं। कुछ लोगों ने उनकी हंसी जरूर उड़ाई, लेकिन उन्होंने अब रोज रात को लालटेन टांगना शुरू कर दिया।

0: उन्हें बहुत अच्छा लगा जब कई राहगीरों ने रात को उनके घर का दरवाजा खटखटाया और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
1: धीरे धीरे ये चर्चा सारे गांव में होने लगी और लगभग सभी लोगों ने अपने अपने घर के सामने लैंप या लालटेन रखना शुरू कर दिया और परिणाम ये हुआ कि दुर्घटनाएं होनी बिल्कुल बंद हो गईं।
0: राहगीर जब दूर से आते तो उन्हें उस गांव को जगमगाता देखकर बड़ी प्रसन्नता होती। अब तो दूर दूर तक इस गांव की चर्चा होने लगी और लोगों ने इस गांव का नाम रखा द विलेज ऑफ लाइट्स।
1: विलेज ऑफ लाइट्स यानी जगमगाता गांव। साथियों, देखा आपने कैसे एक बालक की सोच और इच्छा शक्ति ने सारी परिस्थिति बदल दी। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू किया और वो क्षेत्र दुर्घटना मुक्त हो गया। इसी बात से प्रेरणा लेकर बाद में सड़कों के किनारे तेल के लैंप पोस्ट लगने शुरू हो गए।
0: हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी क्यों करें। कोई करे या ना करे, यदि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए और वो भी पूरी लगन से, जैसा कि उस बालक ने किया।
1: साथियों, वो बालक जॉर्ज कोई और नहीं, उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बने।
0: जी हाँ साथियों, आप ये ना देखें कि कोई क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले वो परिवर्तन आप स्वयं बनिए।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
0: भाई मट्टू और घड़ी।
3: एक दिन का जिक्र है, भाई मट्टू खेलते खेलते

सबसे पहले तो परागमाला के सभी श्रोताओं को जय श्री का प्यार भरा नमस्कार। नया दिन कुछ गीत और कुछ बातें लिए फिर से हाजिर हूँ मैं। श्रोताओ, कभी कभी लोग अपने किस्मत के चलते कामयाबी के राह तक तो पहुंच जाते हैं, परंतु कामयाब तब ही हो पाते हैं जब उनकी मेहनत रंग लाती है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे अदाकारा के बारे में जिनको नाम और काम तो विरासत में ही मिली थी, पर नाम को रोशन किया खुद के मेहनत और लगन से। मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड की अदाकारा, स्टाइलिश टैलेंट से भरपूर अभिनेत्री करीना कपूर के बारे में।

करीना कपूर का जन्म 21 सितंबर 1980 को मुंबई के उस परिवार में हुआ जिनका हिंदी फिल्म जगत में पीढ़ियों से महत्वपूर्ण योगदान है, जो सबसे प्रसिद्ध और पुराना परिवार है। पृथ्वीराज कपूर से लेकर करिश्मा, करीना तक इन कपूर परिवार के सदस्यों ने बॉलीवुड को अपने अभिनय से प्रभावित किया। लेकिन श्रोताओं, इस फिल्मी परिवार से होने के बावजूद करीना को फिल्मों में आने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि पहले कपूर खानदान के लड़कियों को फिल्मों में काम करना मना था। परंतु करीना की बड़ी बहन करिश्मा ने ये रिवाज तोड़कर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिर उसी राह पर चलकर करीना ने भी बॉलीवुड में अपनी कदम रखी और बन गई बॉलीवुड की नंबर 1 अभिनेत्रियों में से एक।

मशहूर एक्टर पृथ्वीराज कपूर के खानदानी परंपरा को आगे चलकर बरकरार रखा करीना ने। बचपन से ही अपने परिवार में फिल्मों को लेकर जो सनक देखा करीना ने, उसी के चलते मन में चाह भी पनपी फिल्मों में आने के लिए, क्योंकि उनकी परदादा राज कपूर, चाचा ऋषि कपूर, पिता रणधीर कपूर, माँ बबीता, सभी अपने गहरा छाप छोड़ चुके हैं बॉलीवुड में। परिवार के रिवाज के चलते पहले तो कई सारे संघर्ष, फिर माँ के समर्थन से अभिनय को ही अपना करियर बनाया करीना ने। फिल्मों में अपनी कदम रखने से पहले करीना ने KNK यानी किशोर नमित कुमार एक्टिंग स्कूल से अभिनय का प्रशिक्षण लिया।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं परागमाला कार्यक्रम आकाशवाणी गुवाहाटी के महाबाहु से। आप हमारे यह प्रसारण सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं परागमाला कार्यक्रम आकाशवाणी गुवाहाटी के महाबाहु से। आप हमारे यह प्रसारण सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री करीना कपूर के बारे में और सुन रहे हैं करीना कपूर अभिनीत चंद फिल्मों के गीत। करीना कपूर खुद बॉलीवुड की प्रसिद्ध कपूर खानदान से ताल्लुक रखती है, साथ ही उनका विवाह भी हुआ प्रसिद्ध पतौदी परिवार में ही। करीना कपूर के ससुर जी मंसूर अली खान पतौदी दिग्गज क्रिकेटर थे, जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे, और सास शर्मिला टैगोर बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री। करीना कपूर की शादी सन 2012 को मशहूर एक्टर सैफ अली खान से हुआ और दोनों को दो बेहद ही खूबसूरत बेटे नसीब हुए, तैमूर और जहांगीर।

करीना ने अपने फिल्मी करियर में कई सारे फिल्मों में अभिनय किया, उनमें से काफ़ी सारे तो बॉक्स ऑफिस में अपना जलवा नहीं दिखा पाया, लेकिन करीना ने अपने अभिनय से दर्शकों के मन में अपना जगह बना लिया। करीना अभिनीत चंद फिल्मों के नाम है रिफ्यूजी, जो करीना की डेब्यू फिल्म थी, फिर मुझसे कुछ कहना है, यादें, अशोका, कभी खुशी कभी गम, मुझसे दोस्ती करोगे, जीना सिर्फ मेरे लिए, चमेली, तलाश, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, युवा, क्योंकि छुप छुप के, जब वी मेट, थ्री इडियट्स आदि। अपने फिल्मों के साथ साथ अपने निजी विवादों, बेपरवाह अंदाजों के लिए सुर्खियां बतोरने वाली करीना फिर भी सबकी चहेती बेबो है। आज आपके जन्मदिन पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्रोताओ, अभी वक्त का है इशारा लेनी होगी जॉयश्री को आपसे विदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए परागमाला। चलते चलते ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

0: অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানৰ এটি অংশ হ'বলৈ পাই আচলতে অতিকৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ। আটাইকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই অনুভৱ সুকীয়া।
1: পুনৰবাৰ দুয়োগৰাকীকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আহি এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে। আৰু শ্ৰোতাসকললৈ পুনৰবাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাই আজিৰ যুৱ সাহিত্য অনুষ্ঠানৰ পৰা মই ভাৰ্গৱ কলিতাই ইমানতেই বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।
2: ইমান পৰে শ্ৰোতাই যুৱ সাহিত্যৰ খণ্ডটি শুনিলে। অনুষ্ঠানত আজি অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকা আৰু বনশ্ৰী বৈশ্য। অনুষ্ঠানটিৰ আঁত ধৰিলে ভাৰ্গৱ কলিতায়ে। আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা অনুষ্ঠানটি ইমানতেই অন্ত পৰিল। চিৰিষা বৰাৰ সহযোগত অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা কৰিলে ইন্দ্ৰজিৎ দাসে।
3: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া 12 বজাত হিন্দী বাতৰি আৰু 12:05 আঞ্চলিক বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
4: নমস্কাৰ। আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই কনকলতা। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। ये सभी दिल्ली के जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
5: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने लोगों से खुद दवाएं न लेने और डॉक्टरों की सलाह लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अचानक किसी दवा का दुष्प्रभाव होने पर उसे नजरअंदाज न करें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के भटिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। भारत ने कनाडा में उड़ान प्रशिक्षण के दौरान एक हादसे में तमिलनाडु और पुदुचेरी के 2 विद्यार्थियों मनोज शिवकुमार और श्रीसरण तिरुगनानासंबंधम की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो शोक संतप्त परिवार के साथ है। महावाणिज्य दूतावास

ने कहा कि वो पार्थिव शरीर को परिवारों तक पहुंचाने के लिए सभी सहायता देने को तैयार है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लक्ष्मण राव इनामदार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि लक्ष्मण राव इनामदार ने राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण और सहयोग के माध्यम से समाज को सशक्त बनाया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने 252.4 अंक के साथ रजत और रुद्रांश पाटिल ने 230.9 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि चीन ने स्वर्ण पदक जीता। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुंटो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু, এতিয়া 1 বজাত হিন্দীত আৰু 1:05ত ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये जानकारी देने की सूची में भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है।
2: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
3: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
2: व्हिच रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नवीन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नवीन ने सुभारती विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने के निर्देश के खिलाफ दायर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने प्राधिकरण को आश्रय स्थल बनाने का निर्देश दिया था, जबकि ये जिम्मेदारी स्थानीय निकायों और प्रशासन की है। सॉलिसिटर जनरल ने प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की विशेष पीठ के पुनर्गठन का भी अनुरोध किया। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। आधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस स्वदेशी जहाज INS सह्याद्री और INS कुलिश फिलीपींस की सुबे खाड़ी पहुंचे। दोनों जहाजों को नौसेना की संचालनगत तैनाती के अंतर्गत भेजा गया है। ये युद्धपोत फिलीपींस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और संयुक्त सहयोग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। मिक्स्ड मार्शल

आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुंटो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: द्वारा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बनाई, करीब 58% वोट हासिल किए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: इस समझौते से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
3: Today we have around 1150.
4: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
3: Which will make a big change in times to come.
0: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
3: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
4: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
3: व्हिच रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
0: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
4: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल की तक की जेल और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला

0: भला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों टेनिकी वराठ नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्धनगर जिले की कम्बिकुड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमा सानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एस पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नबीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नबीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। फटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
3: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रही है। हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। 2 दिन की बहारें हैं जग में। कब जुल्म किसी का चलता है, ये जुल्म का सूरज लाग चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज वो चुनौती देने आया हूँ। प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
0: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
4: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर

0: अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
1: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगी।
0: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
2: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
0: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम

0: आर लखनऊ।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थीं। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু এতিয়া আগবঢ়াবলৈ লোৱা হৈছে পাশ্চাত্য সংগীতৰ অনুষ্ঠান।

खुलुमबाय बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दिनैनि बर' रादाबखौ फरायदों आं भायग' रामसियारिया हादोरसायाव बांबोनाय गोहोनि गोनांथि जानायखौ सुफुंनायजों लोगोसे दारिमिन आरो बाहायगिरिफोरनि थाखाय सोनारजाथाव गोहो जगायनायखौ रोखा खालामनाय फारसे हादोरसाया आवगायगासिनो दं होन्ना गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिदों धुबुरी जिल्लानि सापराव मैया 3200 मेगावाट गोहो गोनां थार्मेल पावार मावथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसननानै गिबि मन्त्रिया बुङोदि गावनि सायाव गाव सोनारनाय आसाम दाफुंनायनि फारसेनिफ्राय बे साना जारिमिनाव सनानि हांखोजों लिरनाय थासिगोन 48 कौटि रां बाहायना मावफुंजानो गोनां बे गेदेर मावथांखिया हादोरसानि गोहो खोन्दोनि जौगानायनि बिथिङाव मोनसे जारिमिनारि आगान होन्नानैबो गिबि मन्त्रिया फोरमायथियो गिबि मन्त्रिया बुङोदि आसामा गोख्रै सा सानजानि गोहो खोन्दोनि गाहाय मिरु महरै गायसनथिजादों आरो माखासे गेदेर गोहो मावथांखिनि खामानिफ्रा सोलिगासिनो दं डक्टर शर्माया लोगोसे बुङोदि सापरनि थार्मेल पावार मोब्लिब मावथांखिया आसाम एबा सा सानजा ओनसोलनिल' नङा बियो गासै हादोरनि थाखाय मोनसे गोहोगोरा खौरां होन्ना बिबुंथियो बे मावथांखिया रोजा रोजा लाइमोनफोरनि थाखाय थिसनथिनि खाबु सोरजिनायजों लोगोसे सापर धुबुरी आरो सोनाब आसामनि जायगायारि रांखान्थियारि जौगानायाव हेफाजाब खालामगोन होन्ना बिथाङा मुंख'यो मुंख'जाथावदि लुफुंनाय सोलिबाय थानाय समाव खमैबो 20,000 सुबुंनि थिसनथि आरो आबुङै खान्थि बादियै मावफुंजायोब्ला खमैबो 5,000 अरायथा साख्रि सोरजिनायनि आसा दं होन्ना फोरमायथियो महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेवनि 578 बोसोरारि जोनोम सानखौ दिनै बायदिसिना हाबाफारिनि गेजेरजों फालिनाय जादों खत्रबिद माजुलिनि खत्र नामगरफोरनि लोगोसे ओनसोलारि धोरोम सिबियारि आफादफोरनि बान्जायनायाव शंकरदेवनि जोनोम सानखौ मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों जिल्लानि गोबां जायगाफोराव मैयानिफ्रायनो शंकरदेवनि जोनोम सानखौ खुंफुंनाय जादों माजुलिनि एलेंगि टकबारि खत्रआव मैयानिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों शंकरदेवनि जोनोम सानखौ फालिनाय जादों बेजों लोब्बा लाखिनानै मैया बिफां फुलि गायनाय बरगीत सावगारि आखिनाय दियानाम बायदि बादायलायनाय खुंफुंनाय जायो दिनै गेवलां मेल बान्था राननाय हाबाफारि आरो हरनि समाव जायगायारि लाइमोनफोरनि हेफाजाबाव हरिचन्द्र भावना दिन्थिफुंनाय जागोन बेबादिनो गवालपारा जिल्लानि खत्र नामगरफोरावबो दिनै फुंनिफ्राय हरिनामनि रिंसारनायखौ खोनानो मोननाय जादों गवालपारा नोगोरनि श्री श्री श्यामराय खत्रआव सानबानि बायदिसिना हाबाफारिजों महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेवनि जोनोम सानखौ फालिनाय लादों बरपेटा कचबिहार डिब्रुगड़ जिल्लानि गुबुन गुबुन खत्र नामगरफोरावबो गुरुनि जोनोम सानखौ बायदिसिना हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनो लानायखौ नुनो मोननाय जादों नगाव

लोकसभा बियाबनि उपेरा बिसायख'थिखौ उदाङै गोग्गो आरो गोजोनै खुंफुंलांनो थाखाय नगाव जिल्ला खुंथाया साखाफारा खालामगासिनो दङ। बिसायख'थियारि हाबाफारिखौ मोजाङै सालायलांनायनि थांखिजों मैया जिल्ला बिसायख'थियारि मावख'गिरि एबा जिल्ला बेंगिरि शइकियाया स्ट्रं रुम आरो सानग्रा मिरु महरै बाहायजानो गोनां गंनै फरायसालिखौ नायगिदिंहैयो। बेराफारसे बिजेपि, बेरेखा हान्जा, कंग्रेस, एआईइउडिएफखौ लाफानानै गुबुन गुबुन राजखान्थियारि हान्जाफोरा बिसायख'थियारि फोसावदिंनायखौ गोबारै खालामगासिनो दङ। मंख'जाथावदि, फैगौ 6 अक्ट'बराव नगाव लोकसभा बियाबनि उपेरा बिसायख'थिखौ खुंफुंनाय जागोन आरो 9 अक्ट'बराव भट साननाय जागोन। सेन्सासनि गिबि खोलोबनि खामानिया आबुं जानायखौ नोजोरथि लाखिनानै हादोरसा सरकारनि फरायसालि सोलोंथाय बिफाना गावजों गाव बुजिलायनायनि सायाव बिथा खालामना फोरोंगिरिफोरनि सोलायलायनायखौ गनायथि होदों। बे बिथिङाव फरायसालि सोलोंथाय बिफाननि कमिश्नार सेक्रेटारि नारायण कौरआ गेजेर सोलोंथाय दैथायगिरि आरो गुदि सोलोंथाय दैथायगिरिनिसिम गांसे लाइजाम दैथायहरदों। बे लाइजामाव सोलायनाय फोरोंगिरिफोरखौ गोदान फरायसालियाव हाबनो थाखाय गोजाम फरायसालिनिफ्राय उदां खालामना होनो थाखाय बिथोन होनाय जादों। गुबुन फारसे जायफोर जिल्लायाव बिसायख'थिनि कड अफ कन्डाक्टआ सोलिगासिनो दङ बे जिल्लाफोराव कड अफ कन्डाक्टआ जोबनायनि उनावसो फरायसालिनिफ्राय उदां खालामना होनो थाखाय बुंनाय जादों। डिमाहासाव जिल्लानि अमरांसाव फैगौ 24 सेप्टेम्बराव गिबि खेबनि थाखाय हादोरसा खोलोबनि मुलुगनां दावबायारि सानखौ खुंफुंनो लानाय जादों। डिमाहासावनि मिथिंगायारि समायना जारिमिनारि हारिमु आरो दावबायारि जायगा महरै जानो हाथाव आयदाफोरखौ लाना सावरायनायनि थांखियै खुंफुंजानाय बे सानसेयारि हाबाफारिनि बाहागो महरै साखोन सिखोन खालामनाय, सावरायनाय, दंफां फुलि गायनाय आरो मोनाबिलि हारिमुवारि हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव जानो गोनां सावरायनायाव आसामाव दावबायारि आरो हाजारि दावबायारिखौ गोदान महर होनायाव AI आरो डिजिटेल मावफारियाखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जागोन। हाबाफारियाव दावबायारि मन्त्री अजन्ता नेउगा गाहाय आलासि महरै आरो डिमाहासाव जारखुंथाय परिषदनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा देवलाल गार्लसाया माननि आलासि महरै बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे दिनैनि बर' रादाबाबो एसेनोसै।

0: खुलुमबाय बे आकाशवाणी गुवाहाटी नोंथांमोना आयदाखौ खोनानो मोनदों महाबाहु दालायनिफ्राय गिबियावनो दुलाराय खोनासंगिरिफोरनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहोनानै दिनैनि बर' आफादखौ बेखेवनाय जाबाय आफादखौ फोसावनाय जादों आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालायनि मेडिया मैबनि 411.5 मिटाराव आरो FM बेन्दनि 101.6 मेगाहार्सआव बे फोसावनायखौ नोंथांमोना आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगाहार्स आरो आकाशवाणी धुबुरीनि 103.3 मेगाहार्सआव रिले खालामनानै फोसावनायखौ खोनानो मोनगासिनो दङ लोगोसे निउज अन AIR मबाइल एप आरो AIR रेडिय' मबाइल एपनि जोहैबो नोंथांमोना बे फोसावनायखौ खोनानो मोनगासिनो दङ दिनै स्टुडिय' दं आं भायग' रामसियारि दान्दिसे उनाव नोंथांमोना जोंनि उननि हाबाफारिखौ खोनानो मोनसिगोन बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दानिया फोसावनो लादों आइजोफोरनि मुङै फोसावनाय आइजो आफाद आयदा आयदायाव खोनासंदो आगोलावनो फोसावजाखांनाय मल्लिका बसुमतारीनि बुंथिनायाव हारिमुवारि संरैखा खालामनायाव आइजोफोरनि बिफाव
1: हारिमुखौ संरैखा खालामनायाव आइजोफोरनि बिफाव रल अफ उइमेन इन प्रिजार्भिं कालचार हारिमुआ माखौ बुङो बेनि फिननायखौ फंसे रावजों बुंनानै फोजोबनो हाया हारि मोनसेनि महर मुस्रिया जेराव रोखायै बेरखाङो बेनो जाबाय हारिमु सुबुं माहारिया समाज दानानै रुजुरुमु संसार जानायाव नुजाथिफैनाय एबा जाखांफैनाय गासैबो जाथायफोरनि जथायखौनो हारिमु बुंनो हायो हारिमुनि सोमोन्दै गोबां बिजिरगिरिफ्रा गावबा गावनि

गेजेरजों गोबां बानबुंथाय होलांदों। एडवार्ड बी टेलरनि बादिब्ला हारिमुआ जादों गियान, फोथायनाय, आरिमु, नैतिकता, आयेन, आसार खान्थि आरो गुबुन समाजारि मावफुंथाय खामानिनि जथाय। हार्सकर्ट्सनि बादिब्ला हारिमुआ जादों मानसिनि दानानै लानाय आबहावा। मख'नाय बुंथिफोरनिफ्राय जों थोंजोङै बेखौनो बुंनो हायो दि हारिमुआ मोनसे हारिनि सुबुं समाजनि जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम गोनां जानाय मोनफ्रोमबो बिथिंनि दानानै लानाय खान्थिनि जथाय। हारिमुआ मोनसे हारिखौ बुहुमनि दरबाराव सिनायथि होनो हायो। मोनसे हारिनि हारिमुखौ संरैखा खालामनानै लाखिनाया बे हारिनि सुबुंफोरनि बिबान। समजों लोगोसे हारिमुनि महराबो सोलाय सोल' जाबोयो। अब्लाबो दोरोंखौ नागारजोबनानै गोदानखौल' बोजबनानै लायोब्ला बे हारिनि गुदि हारिमुआ गोमालांगोन। बिनिखायनो हौवा हिन्जाव ज'यै लोगो नांनानै गावनि हारिमुखौ दोनथुमनायनि गोनांथि दङ। मोनसे हारिनि हारिमुखौ संरैखा खालामनायाव आइजो माहारिया बांसिनै बिफाव लानायखौ नुनो मोनो। सुबुं समाज दानायाव हौवाफोरजों समान हिन्जावफोराबो बिबान लायो। हिन्जाव माहारियासो मोनसे हारिनि थुनलाइ आरो हारिमुनि बागै सुबुं माहारिनि गेजेराव गोसारहोयो। बे बिथिङाव आइजोफोरनि बिफावा जोबोद गोसो होनो गोनां। बे बाथ्राया थारदि मोनसे हारिनि हारिमुआ आइजोफोरनि आखल आखु, मावनाय दांनाय, गाननाय जोमनायनि गेजेरजोंसो रोखा रोखा बेरखाङो। न'खरखौ साखोन सिखोन खालामनानै न'खरनि सुबुंनि गेजेराव जेरैबायदि मिनि रंजानाय लाबोयो, बिदिनो आइजो माहारिया मोनसे हारिखौ जौगानायाव अरायबो बिहोमा होबोदों आरो दिनैसिमबो होगासिनो दङ। बिनिखायनो हिन्जाव माहारिखौ मोनफा मोनफा हारिनि हारामद एबा हारिमुनि नेरसोन होन्नानै बुंनो हायो। दुलाराय बुहुमनि हारिमुनि जारिमिनखौ नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो दि मोनफ्रोमबो हारिनि हारिमुखौनो हमथानानै लाखिनायाव आइजोफोरा बांसिनै बिफाव लानाय। गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै न'खर सामलायनाय, फिसानिफ्राय लानानै न'खरनि गासै सोद्रोमाफोरखौ जोथोन लानाय, समाजनि नेमखान्थिफोरखौ बोजबनानै दावगालांनाय बायदि बायदि हारिमुनि बिथिंफोरखौ हमथानानै सोलिलांनायखौ नुनो मोनो। आथिखाल बिगियाननि मुगायाव जेसेबांखि दावगायाथों मानो आइजो माहारिया गावनि हारिमुखौ लाखिनायाव उन जानानै थायाखै। सोलोंथाइ मोननाय लेखा गोरों आइजोफोराबो होलाय लालायनि गेजेरजोंब्लाबो गाव गावनि हारिनि हारिमुखौ बोजबनानै लानायखौ नुनो मोनो। जेरावखि थाया मानो बिसोरनि गेजेरजों एसेब्लाबो गावबागाव हारिनि दोरोङा बेरखांफायो। बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरफोरनि आइजोफोरनि रुजुनायाव भारत हादोरनि आइजोफोरनि गावनि हारिनि हारिमुखौ बोजबनानै लानाया बाख्नायजाथाव। बैदिक मुगानिफ्राय आइजोफोरा गावसोरनि हारिनि हारिमुखौ जोथोनै हमथानानै लाखिबोदों। हौवा आरो हिन्जाव लोगोसे समाजखौ सामलायोब्लाबो हारिमुखौ रैखाथि होनायाव हौवाफोरनि रुजुनायाव हिन्जावफोरखौ बांसिनै बिफाव लानायखौ नुनो मोनो। न'खर बेंनाय, संनाय खावनाय, गाननाय जोमनाय, मावनाय दांनाय, दानाय लुनाय, धोरोम सिबिनाय बायदि बिथिङाव मोनफा हारिनि हारिमुनि सावगारिफ्रा आइजोफोरनि गेजेरजोंसो स्रा स्रायै नुजायो। बर' हारिनि बर' आइजोफोराबो गावनि हारिमुखौ संरैखा खालामनानै लाखिनायाव उन जानानै थायाखै। बर' हारिमुनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोथोन लानायाव बर' आइजोफोरनि बिफावा जोबोर बाख्नायजाथाव। हारिमुनि गिबिसिन सिनायथियानो जादों गाननाय जोमनाय। बे सिनायथिखौ गोदो गोदायनिफ्राय आथिखालसिम बर' आइजोफोरा रं बेरंनि दख'ना आरो फास्रानि गेजेरजों दिन्थिबोदों। गुबुन गुबुन हारिनि आइजोफोरनि गानग्रा जोमग्रानि रुजुनायाव बर' आइजोफोरनि गानग्रा जोमग्राया जर'खा मासि लानो हादों। सि दानाय, खुन्दुं लुनाय, एम्फौ फिसिनाय आरो गाब गानायखौ बर' आइजोफोरा बिगियाना जोनोम मोननायनि बेसेबा सिगांनिफ्रायनो मावबोदों। खुन बिफांनिफ्राय फिथाइनिफ्राय खुन्दुं लुनानै बायदि रोखोमनि हाग्रानि बिफां, रोदा, बिलाइ, बिगुर आरो फिथाइफोरनिफ्राय गाब दिहुननानै गाब गानानै रंगिना सोंगिना आगर एरनानै सि महर होनायाव बर' आइजोफोरा जोबोद आखा फाखामोन। इन्दि सिनि साहिदाया आथिखाल मुगायाव जोबोद बांबोदों। बे इन्दि सिया बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोजादों। एम्फौ फिसिनानै फिथोब लुनानै इन्दि खुन्दुं लुनायाव बर' आइजोफोरखौ बाख्नायथाव जाथावथार। जानाय लोंनायाबो मोन हारिमुनि मोनसे बाहागो। बर' आइजोफोरनि संनाय खावनाय, आलासि सिबिनाया मख'जाथाव। मोनफ्रोमबो हारियानो गावबा गावनि स्टाइलनि संनाय खावनाय एबा जानाय लोंनायनि जर'खा आखु दङ। बेफोरखौ जोथोनै लाखिनायाव हिन्जावफ्रानो बांसिनै बिफाव लायो। हिन्जावफ्रा जेसेबांखि लेखा फरा गोरों जानानै साख्रि बाख्रि लाया मानो गावजों लोगोसे फिसाइ फिसा आरो न'खरनि गुबुन सोद्रोमाफोरनि थाखाय संनो खावनो गोनां जानानै फैयो। बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला हिन्जावफोरखौनो हारिमुनि बेंथुमग्रा होन्नानै बुंब्लाबो गोरोन्थि बुंनाय जानाय नङा। न'खरखौ साखोन सिखोन लाखिनानै इसोर सिबिनाय हाबाफारियावबो आइजोफोरखौनो गाहाय बिफाव लानाय नुनो मोनो। मोनफ्रोमबो हारियानो गावबागाव खान्थिजों इसोरखौ सिबियो। बयहाबो गाव गावनि धोरोम दङ। धोरोम एबा इसोर सिबिनायनि गेजेरजोंबो हारिमुनि सावगारिया बेरखांनो खाबु मोनो।
नखर गंसेनि गाहाय आइजोआसो बेयाव गाहाय बिफाव लायो। बियो गोरा गोगोम जायोब्ला

0: न'खर गंसेया गोख्रोङै दावगालांनो हायो। जोबनायाव जों बेखौनो बुंनो हायो दि मोनफा हारिनि सुबुं समाजाव जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम बाहायबोनाय बायदि आसार खान्थि, आइजें आइला फोथायनाय बायदिफोरखौ जोथोनै लाखिबोनाय एबा संरैखा खालामबोनाया बे हारिनि आइजोफोरखौबो गोख्रोङै बिफाव लायो। राजखान्थि, रांखान्थि, समाजखान्थि बायदि बायदि हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे समानै हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव आइजो माहारिया उन जानानै थायाखै बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा।
1: एसे सम नोंथांमोना, आइजो आफाद आयदायाव मल्लिका बसुमतारिनि बुंथिनायाव हारिमुखौ संरैखा खालामनायाव आइजोफोरनि बिफाव बाथ्रा सावरायनायखौ खोनासंनो मोनबाय। बेजों लोगोसे आइजो आफाद आयदायाबो एसेनोसै। बेयो आकाशवाणि गुवाहाटि महाबाहु, दानिया फोसावनो लादों मेथाइनि आयदा। आयदायाव दिनै फोसावनो लादों गिबियै फोसावजेननाय प्रतिमा ब्रह्मनि माखासे गोदान मेथाइ। गिबियावनो खोनासंदो बिथांनि गाराङाव नैबे गोदान मेथाइखौ, मेथाइनि बाथ्रा इन्दिरा बर'।

प्रतिमा ब्रह्मनि कारावनो खोनासंदो बिथांनिनो गिबियै फोसावजेननाय नैबे गुबुन दोंसे गोदान मेथाइखौ। मेथाइनि बाथ्रा इन्दिरा बर'।

बिथांनि गारावनो खोनासंबावदो गिबियै फोसावजेननाय नैबे गुबुन मोनसे गोदान मेथाइखौ। मेथाइनि बाथ्रा निनगोमा स्वर्गियारि।

प्रतिमा ब्रह्म बिथांनि गारांआवनो खोनासंबावदो नैबे गिबियै फोसावजेननाय गुबुन दोंसे गोदान मेथाइखौ। मेथाइनि बाथ्रा चक्रधर ब्रह्म।

मेथाइनि आयदायाव प्रतिमा ब्रह्मनि गारांआव खोनासंदो गिबियै फोसावजेननाय नैबे गुमुदोंसे मेथाइखौ मेथाइनि बाथ्रा जतीन्द्र नाथ बर'।

मेथाइनि आयदायाव नोंथांमोना प्रतिमा ब्रह्मनि गाराङाव गिबियै फोसावजेननाय माखासे गोदान मेथाइ खोनासंनो मोनबाय। दामनाय देनायाव दंमोन तबलायाव बबिराम बर', सिफुङाव परमेश्वर बसुमतारि, किबर्डाव दुलेन नार्जारि, गिटाराव जगदीश शर्मा आरो रेकर्डिं खालामनायाव दंमोन सुलेन्द्र कुमार शर्मा। बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु। दानिया फैफिनदो मेथाइनि आयदायाव। आयदानि जोबथारनायाव खोनासंदो रत्नेश्वर महिलारि गाराङाव नैबे खुगा मेथाइखौ।

बेजों लोगोसे मेथाइनि आयदायाबो एसेनोसै। बेयो आकाशवाणि गुवाहाटि महाबाहु। सम जाना फैनाय लोगो लोगो दुलाराय खोनासंगिरिफोरनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ फिन बाहरफिननानै दिनैनि बर' आफादखौ इसेयावनो थुंगेनाय जाबाय। गोजोन्थों।

0: ইমানপুৰে আধুনিক গীত শুনিলে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহুৰ পৰা। খন্তেক পাছতেই সমাচাৰ সন্ধ্যা দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচাৰ সন্ধ্যা কে সাথ মই মুকেশ কুমাৰ। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
2: This strategic partnership,
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी

0: निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
3: सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उप प्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया, ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा

0: पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
1: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है, जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी 2 बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
3: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही UPI से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। और साथियों, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
2: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर UPI के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
4: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है UPI के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो UPI ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।

0: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী মহাবাহু। অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 411.5 মিটাৰত 729 কিলোহাৰ্জ আৰু এফ এম বেণ্ডৰ 101.6 মেগাহাৰ্জত। আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ নিউজ অন এ আই আৰ মোবাইল এপতো শুনিব পাৰে। এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ চিত্ৰগীত। অনুষ্ঠানত পুনতেই শুনাবলৈ লৈছোঁ ৰশ্মিৰেখা ছবিৰ এটি গীত, শিল্পী ভূপেন হাজৰিকা।